और अक्सर ऐसा जो है देखते हैं अधूरी रह जाती है उन्हां लोकां दी जिंदगी जिन्हां दे अंदर स्त्री अर्ध अंग ही रह गई संपूर्ण ना हो सकी, जिन्हां दे अंदर पुरुष अर्ध अंग ही रह गया संपूर्ण ना हो सकिया। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने ते किसे विचारधारा नु छुपाया नहीं, सामने स्पष्ट करके कह देता है, बाली रोवे नाए भता नानक दुखिया सब संसार। बाली ए कुआरी कन्या जो व्याण योग हो गई है, इदा रोना होर कुछ भी नहीं है, ये संपूर्ण होना चाहती है। इदे अंदर जो अधूरा पुरुष है वो संपूर्ण होना चाहता है, इसका मूल दुख यही है, इदा प्रबल दुख ए है। जवानी दी दहलीज दे कदम रखदे ही एक पुरुष दा एक मर्द दा सब तो वड्डा दुख यही है कि उसके अंदर जो अधूरी स्त्री है वो संपूर्ण होना चाहती है। तो इस तरह समाजिक ए रिश्ता जो पति पत्नी दा है ए एक दूजे नू संपूर्ण करदा है। अगर पत्नी ने वाकई पति नू संपूर्ण नहीं कीता तो उस पति दे अंदर जो अधूरी स्त्री सी वो संपूर्ण नहीं हुई, और उस पति दे अंदर उस पुरुष दे अंदर जो अधूरी स्त्री बैठी है वो अंश मां दी है, अधूरी अंश उस दे अंदर मां दी है। और जो लड़की है वो जो बच्ची है वो जो पत्नी है उस दे अंदर अधूरी अंश पिता दी है। मां बाप तो शरीर आया है तो अंश ते मां बाप दी है। तो स्त्री दे अंदर अधूरा पुरुष जो बैठा है वो अधूरा पिता ही है, और स्त्री दे अंदर जो अधूरा पुरुष बैठा है वो पिता ही है, और पुरुष दे अंदर जो अधूरी स्त्री बैठी है वो मां ही है। इंज कह लो जीवन भर पुरुष मां दी तलाश करता है, जीवन भर स्त्री पिता दी तलाश करती है, और उसनु अपने पति देच पिता दी झलक ना मिले, अपनी पत्नी देच मां दी झलक ना मिले, यकीन जानो तृप्ति नहीं आती, सारी जिंदगी अधूरापन रहेगा, खटकदा रहेगा, बोझ रहेगा। और वाकई स्त्री दिच किधरे मां दी झलक मिल गई, मां दे स्वभाव दी झलक, मां दी ममता दी झलक, मां दी शफकत दी झलक, मां दी हमदर्दी दी झलक, मां दे प्यार दी झलक, मां दी कुर्बानी दी झलक जे किधरे पत्नी दे च मिल गई तो समझ लो पुरुष संपूर्ण हो गया, मुकम्मल हो गया। और इस तरह स्त्री नूं जे किधरे पति दे चो अपने पिता दे प्यार दी झलक मिल गई, बाल कन्या को जैसे बाप प्यारा भाई को अत भाई। गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने कि बच्ची ए बाल कन्या पिता दी तरफ लपकदी है, ए बाहां पसारदी है, इसका मान तान पिता है, ए परिक्रमा प्यो दे आले दुआले करदी है, और प्यो दा प्यार भी अक्सर इसलिए छलकदा है, इसलिए जो है उमड़दा है। पति दे चों ए प्यार ना मिलिया, पिता दे प्यार दी झलक ना मिली, पिता दे प्यार दी शफकत ना मिली, पिता दे प्यार दा हुलारा ना मिलिया, ए स्त्री भी अतृप्त रहेगी, इस रिश्ते च उन्हें कोई सुकून नहीं मिलेगा, रूहानी सुकून नहीं मिलेगा, रूहानी तस्कीन नहीं मिलेगी। और इस तरह दे रिश्ते है जो इंज कह लो पति नू पत्नी दे चो मां दी झलक नहीं मिली, और पत्नी नू पति दे चो कोई पिता दी शफकत ते पिता दी तस्वीर सामने नहीं जो है प्रगट हुई, ए रिश्तियां च अंदरूनी तौर ते दरार बनी रहिंदी है। और कई दफा हालात ऐसे हो जांदे ने बैरूनी तौर ते भी दरार प्रगट हो जांदी है, नौबत तलाक तक पहुंचती है, रिश्ते जो है टूटते ने। वास्तविक ए रिश्ता जोत दा रिश्ता है, अंदरूनी रिश्ता है, और परिपूर्ण परमात्मा ने इस ढंग दा जो है बना रखे। धन गुरु नानक देव जी महाराज इन्हां महान रिश्तियां दा जिक्र बड़े सोहने आलमाना ढंग नाल उजागर करदे ने। घर मंदर खुशी नाम की नदर तेरी परवार, हे परिपूर्ण परमात्मा मेरा बड़ा सुंदर घर भी है, बड़ी सुंदर महल माड़ी भी है, और उस घर दे च उस महल माड़ियां दे अंदर मेरा बहुत सुंदर एक परिवार भी है। मैं फिर अर्ज करा मनुख नु सिर्फ खाना ही नहीं चाहिदा, सिर्फ पीना ही नहीं, सिर्फ पहनना ही नहीं।

0: सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, मनुख नु घर भी चाहिदा है। और सिर्फ घर नहीं, परिवार भी चाहिदा। अगर परिवार नहीं तो घर ही नहीं। घर दे च ओ भी चाहिदी है जिसनु कहा जाए घर वाली, घर दे च ओ भी चाहिदा है जिसनु कहा जा सके घर वाला। घर वाला ही नहीं है, घर वाली ही नहीं है तो घर कादा? घर की है, कोई इट्टां दी ढेरी नु घर थोड़ी कहंदे ने, कोई पत्थरां दे इकट्ठ नु घर थोड़ी कहंदे ने। नहीं, घर है तो इस दी शोभा है घर वाले नाल, घर वाली नाल। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, हे परिपूर्ण परमात्मा, ए जो तेरी मेरे ते निगाह हो गई है, ए जो तू मेरे ते अपनिया निगाहां सुट दितियां ने, ए जो मैं तेरी निगाह दे थले आ गया, ए मैनू सुंदर महल दी प्राप्ति हो गई है, परिवार दी प्राप्ति हो गई है, घर दी प्राप्ति हो गई है। हुक्म सोई तुद भाव सी, होर आखण बहुत अपार। दरअसल मनुख दे प्राणा दे च ए भी प्यास है कि मैं घर दे च जो कुछ आखा मेरी गल ठुकराई ना जाए, मेरा बोल काबले कबूल हो, मां नू पिता नू पत्नी नू पुत्रा नू भरावां नू भैणा नू कम से कम मेरी गल रद्द ना कीती जाए। साहिब कहिंदे ने, हुक्म सोई तुद भाव सी, होर आखण बहुत अपार। ऐ मेरा हुक्म करना है, केड़ा? जिड़ा तेरे हुक्म नू पा जाना है, जिड़ा तेरी रजा दा मैनू चंगा लगना है। जो तेरा हुक्म मैनू चंगा लगन लग पे है, मानो यही मेरा हुक्म पे चलदा है, यही मेरी गल पे चलदी है, मेरी गल कोई रद्द नहीं करदा। दरअसल एक बहुत वड्डी सच्चाई अध्यात्मक दुनिया विच प्रगट होंदी है उस दिन, जेड़ा मनुख परमात्मा दा हुक्म मनदा है जगत उसका हुक्म मनदा है, और जो परमात्मा दे हुक्म नू एक पासे कर देंदा है, उस मनुख दे हुक्म नू भी दुनिया बहुत चिर तक मन नहीं सकदी, ओनू भी नजरअंदाज कर दिता जांदा है, उसनू भी एक पासे सुट जांदा दिता जांदा है। जो उस एक दा हुक्म मन लैंदा है, उसका हुक्म सारी कायनात ते चलदा है। तो हुक्म सोई तुद भाव सी, और आखण बहुत अपार। और ते बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ कहना है, पर हे परिपूर्ण परमात्मा, वास्तविक तेरी रजा विच राजी रहना, तेरे हुक्म नू जो है चंगा समझ के ओनू अपने अंदर धार लेना, तेनू पा जाना, बस यही अपनी गल दा चलाना है, यही जो है असी अपना हुक्म चलांदे आ। नानक सच्चा पातशाह पूछ ना करे विचार। ओ परिपूर्ण परमात्मा सच्चा है, मालिक है, पातशाह है, ओ किसी कुल पुछ पुछ के बख्शिशा नहीं देंदा, देई जांदा है, देई जांदा है। किसी खेत कुल बदल पुछदे नहीं, बरसीए के ना बरसीए। किसी घर कोल सूरज पुछदा नहीं, रोशनी देई है के ना देई है। किसी घर दे कोल चंद्रमा पुछदा नहीं, मैं अपनियां किरणां खिलेरां के ना खिलेरां। और किसी मनुख कोल पवन पुछदी नहीं, तेनू छुआ के ना छुआ। महाराज कहिंदे ने, इस तरह परमात्मा पुछदा नहीं, बिना पुछिया ही सब कुछ देई जांदा है, बिना पुछिया ही सब कुछ वंडी जांदा है, बिना पुछिया ही सारियां नियामतां झोली दे जो है पाई जांदा है। आखरी रहाओ, चौथा रहाओ, बाबा होर सोना खुशी खुआर, जित सुते तन पीड़ी है मन में चले विकार। गुरबाणी ग्रामर दे मुताबिक इथे सौण दे अर्थ ने ऐशो इशरत, परिवारिक ऐशो इशरत, परिवारिक सुख साधन, परिवार दा सारा सुख दा माहौल। बाबा होर सोना खुशी खुआर, जित सुते तन पीड़िए मन में चले विकार। होर सोना, होर ऐशो इशरत, इस तो इलावा जो सतगुरु देव जी महाराज ने सवाग दे दसी, इस तो इलावा जिड़ी ऐशो इशरत है, महाराज कहिंदे ने, तन नू पीड़ित कर देंदी है, मन नू रोगी कर देंदी है। ए पावन पवित्र वाक धन गुरु नानक देव जी महाराज दा ऐसा है, चार रहावां दे च जिंदगी दे मूल सिद्धांत सारे दे सारे बयान कर दिते ने। और तय दिल नाल जो इन्हां नू हिरदे दे च वसा लवे, लोक परलोक उसका सुहेला हो जांदा है, तन दे तल ते अरोग रहिंदा है और मन दे तल ते आनंदित होंदा है। इस तरह उसका लोक परलोक सुहेला हो जांदा है। और ये पंक्ति उस दे पूरी उतरदी है, ए लोक सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले।
1: एक ओंकार सतनाम करता पुरुख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद बेसुमार अथा अगन अतोलय

जब हृदय तक ध्यान पहुंच जाए पसंती तक ये अनहद दियां धुनियां सुनाई देन लग दें। अनहद रूप अनाहद बाणी चरण सरन जाए बस्त भवानी। आहत शब्द साडे ने असी बोलते हाँ, अनाहद बोल परमात्मा देने ब्रह्म वाक उन्हों कहते ने ब्रह्म बोल। ब्रह्म दा शब्द ब्रह्मंड दी धुनी है। मनुख गाहे बगाहे सुनदा है, बहुते ते नहीं। इस तरह दे मनुखां दे नाल धरती जरूर भरी पई है, बहु गिणती च ना सही पर फिर भी है। और इस तरह दे पुरुष दास नूं मिले ने, कईयां ने ते हैरानगी नाल पुछिया की है, सड़ी समझ तो परे ये की है। क्योंकि कलगीधर पिता ने खुद ये लिखे है, ऐसा हो सकता है कि मनुख हैरान होके पूछे ये कौन आए आत्म स्वरूप जय अमित तेज अवगत अभूत। श्री मुखवाक पातशाही दस ये की है, कौन है, ये किसकी आवाज है। ऐसा प्रश्न अभ्यासी के अंदर पैदा हो सकता है, क्योंकि जिंदगी च पहली दफा तो होना है, इस तरह पहले तो इसका कोई अनुभव है नहीं। तो हैरान होके कह सकता है कि है, लेकिन अजे भी इसने मंजिल नु नहीं छोया, अजे भी अनाहद नु सुनदा पिया, अजे भी उस परम अनंत तक नहीं पहुंचे। कहिंदे ने ध्यान जद पहुंचे किथे परा तक नाभि तक जिथों यह धुन उठती पई है, ध्वनि तक ये धुन पहुंच जाए। जिथों ध्वनि उठ रही है वाहेगुरु वाहेगुरु सुन के यही ध्वनि फिर उत्थे पहुंचे। उल्टी गंगा जामन मिला धुन नाल इस तरह धुन टकरावे, कहिंदे नाभि पूरी खुल जाती है। ये दो हालतां दे विच खुलदी है, दो हालतां विच। एक जद मौत आउंदी है अंतिम समय ये नाभ खुलदी है। जिक्र कर देने मेरे पातशाह, आज काल खुले तेरी गांठड़ी, आज कल दे चे गंढ खुलण वाली है, ये नाभ खुलण वाली है। इसे दे चे चोट जो मौत कर दी है ते नाभ खुलदी है, आखिरी प्राण निकलदा है, तो शरीर दी जड़ी हालत बनदी है ओए हाथ मरोड़े तन कपे स्याऊ होआ सेत। इंज मुठियां बंद होणगियां, दंदियां वजणगियां, कंबणी छिड़ेगी, समझ लो गंढ खुल गई, आखरी प्राण गया, मौत हो गई शरीर दी, खत्म। ये प्राकृतिक रूप विच हर एक दी गंढ खुलदी है, पर उस समय खुलदी है कोई होश नहीं आता, बेहोशी सी खुलदी है। और चूंकि पीड़ा इतनी जबरदस्त होती है तो प्रकृति बेहोश कर देती है। जैसे ऑपरेशन करन लगे हैं, डॉक्टर बेहोश करता है, उस जगह नु सुन करता है, यकीन जानो एक शरीर दे चो जीवन चेतना नु कढ़ के दूसरे च पाना है, ये तो बहुत वड्डा ऑपरेशन प्रकृति करती है, परमात्मा करता है, तो प्रकृति बेहोश कर देती है। उस समय कोई भी होश च नहीं आता, और असह पीड़ा है जो नहीं मनुख सहार सकता, असह पीड़ा अथा पीड़ा। उस पीड़ा करके है तो बेहोशी, पर फिर भी जड़ी शरीर की हालत बनती हो, हाथ मरोड़े तन कपे स्याऊ होआ से, इंज मुठियां बंद होणगियां, दंदियां वजणगियां, कंबड़ी छिड़ेगी। शरीरक आचार्य कह देंदे ने इह गिआ आखरी प्राण, खत्म, इह गंढ खुल गई, नाभ खुल गई। इक उदों खुलदी है वाहेगुरु वाहेगुरु या कोई भी धुन जो अपने अपने अवतारां तो जो उन्हां नूं मंत्र मिले उच्चारण करदे ने। वाहेगुरु वाहेगुरु दी ए ध्वनि जद वाकई ध्वनि तक पहुंचती है, नाभि तक पहुंचती है, ए ध्वनि जद ध्वनि तक पहुंचती है, नाभि ध्वनि जबान जो कह रही है ध्वनि, ए जद ध्वनि ध्वनि तक पहुंचती है।

나는 그 로빈슨이지 말하이다. 혹은 레드 베어리 뭐지고 시크 베어라나 दरअसल सिख का स्वरूप ही ता बनता है जे उस को रहनी हो गए रहनी दो तरह की मानसिक ते शरीरक मानसिक रहनी है बाणी दा पाठ जपजी साहब जाप साहब सवैये चौपाई आनंद साहब और जितनी बाणी पढ़ सके मूल मंत्र दा जप एक ओंकार तो लेके गुरप्रसाद तक वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु मंत्र दा जप दो वक्त 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा या जितना उसको समय ये मानसिक रहत है तन दुते पंच ककार ये शरीरक रहत है मन करके सिख बने तन करके ये सिख बने तो मानसिक ते शरीरक रहत चाहिए ना मानसिक रहत होवे ना शरीरक तो धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहंदे ने ए सिख मैनू प्यारा ने क्योंकि इसने पाहुल नहीं ली और रहनी नहीं रखी धरे केस पाहुल बिना देखी मूरख सिख तिसको दर्शन ना है मेरा पापी त्यागे बिख रहत नामे इस तरह के बोल ने ज्यो काहू पे गधा नवायो फूल माल ताए मूंड धरायो जिवे कोई खोते नु इशनान करा के उदे गल विच फुलां दी माला पावे और उदे शरीर दे चंदन इत्यादिक लावे ज्यो काहू पे गधा नवायो फूल माल ताए मूंड धरायो तै की कर ताकी शोभा नाही हासी होए होत जग माही अगर इस तरह करके कोई खोते नु बाजार विच ले आवे लोकी उस नु वड्याण नहीं लगे बल्कि हसन गए उसते भई लै खोते नु इशनान करा के चंदन ला के गले विच फूलां दी माला पवा के लेके आ गया तै की कर ताकी शोभा नाही हासी होए होत जग माही ये प्रमाण किस प्रथाई दिता जा रहा है अगां फरमान कर देने तिम कुरतियन केस रखाए कहो कैसे ओ शोभा पाए इसे तरह जो कुरैती है उसने केस रखे हुए ने मानो खोते नु इशनान कराया गया फुलां दी माला पवाई गई है चंदन आदक लाया गया बस खोते ही रखोता है सिर्फ सिर्फ केस ने ना मानसिक रहत ना बाकी शरीरक रहत भाई साहब भाई नंदलाल दा बड़ा सुंदर फरमान निशाने सिखी ई पंज हरफ का जिथे हृदय दी बनावट बनेगी बाणी नाल मूल मंत्र दे जप नाल गुरमंत्र दे जप नाल उथे शरीर सिखी दा स्वरूप पेश करेगा इना पंच ककारा नाल कक्का के

ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निरवैर अकाल मूरत अजोनी सैभं गुरुप्रसाद हर अमृत वेले वत्ते का बीजिया भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाही अमृत वेला सच नाम वड़े आई विचार। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बाणी ने अमृत वेले की अपनी एक महानता अपने बोलां विच अपने शब्दां विच दर्शाई है। दरअसल देखा जाए प्रकृति ने जो साढ़े शरीर की यह सिरजना की है इस दे च रुत दा ते वक्त दा अपना प्रभाव है। मौसमी फिजां चारों पासे प्राकृतिक मंडल उदास दिखाई देता है। झड़ रहे ने पत्ते और चल रही ने हवावां डोल दियां हुई शाखां अपना शिंगार बदल रही ने उदास दिखाई दे रही नगन दिखाई दे रही ने ये शाखां दरख्तां दी। हो बहु मनुख ते मन की प्रकृति भी कुछ इस तरह ही जो है देखने को मिलती है। जर्रा जर्रा पत्ता पत्ता खिड़िया होया है। मौसम बहार है। धरती ने मानो बड़ा सुंदर शिंगार कीता है। किधरे पीले रंग दा किधरे गुलाबी रंग दा किधरे चिट्टे रंग दा इतने सुंदर शिंगारमई वस्त्र धरती दा चप्पा चप्पा सुहावना हो जांदा है। ए मौसम बहार मनुख दे मन दे उत्ते भी अपना एक खास असर पांदा है। गर्मी दी रुत आ गई है। मन दी हालत कुछ होर हो गई है। ठंड आ गई है। शरीर ठिठर रहा है। तो रुत तो और समय तो मन प्रभावित है तन प्रभावित है। सर्दी आ गई है। सानू कपड़े बदलने पैंदे ने मोटे कपड़े गर्म कपड़े लबने पैंदे ने और गर्मी मजबूर कर देंदी है गर्म कपड़िया नूं एक पासे करन ते। हू बहु जो समा है दिन दे चार पैर रात दे चार पैर जिथे रुत दा असर है मौसम दा तन ते मन ते असर है उथे चार पैरां दा जिसनूं समा कहिंदे ने वक्त कहिंदे ने इसका भी मन दे उत्ते तन दे उत्ते अपना प्रभाव है। आद काल तो संत जना दी पकड़ विच आई एक गल कि रात का जो चौथा पैर है अगर मनुख समय सिर वाकई रात दे पहले पैर दे अंत होंदे होंदे सौ गया तो शरीर दी नींद रात दे चौथे पैर दे आरंभ होंदे संपूर्ण हो जाती है अखां खुल जांदियां। एक गल वखरी है अगर मनुख समय दे मुताबिक सुता नहीं तो फिर मुश्किल है कि अमृत वेले ए उठ सके। वक्त सिर सौ गया नियम पूर्वक तो प्रकृति जगा देंदी है। असी देखते हां प्रकृति पंछियों नूं जगा देंदी है पशुओं नूं जगा देंदी है क्योंकि उन्हां दी नींद स्वाभाविक है प्राकृतिक है। रात दे पहले पैर दे अंत होंदे आउंदे हां चिड़िया पंछी पशु करीबन करीबन सो जांदे ने। रात दा चौथा पैर आरंभ होया है चहचहांदे हुए पंछी उठ बैठते हैं।

शक्ति है। पर ये शक्ति कितनी है, केता कौन सुहायो रूप, साहब कहते ये शक्ति कितनी है, अंदाजे तो परे, किस दे कोल एक कुवत है, किस दे कोल शक्ति है कि उस शक्ति नु नाप सके, तोल सके, गिन सके। क्योंकि बंदे कोल पैमाने तीन ने, कुछ वस्तुआं ऐसिया ने जिन्हां नू बंदा तोल के अंदाजा ला लैंदा है इतनी है, कुछ ऐसा है जिसनू गिनना पैंदा है, ते कुछ ऐसा है जिसनू नापना पैंदा है। गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान, हे परमात्मा तू नापिया नहीं जा सकता, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि तू कित्थों शुरू होना है, कित्थे खत्म होना है। कोई ना जाने तेरा केता केवल चीरा, जो तेरा चीरा जो तेरा चोला है ये नाप तोल विच नहीं आंदा, जो तेरे गुण ने वो गिनती विच नहीं आंदे, अंत न सिफती कहन नांद, और जितना का तुम है तोलिया भी नहीं जा सकता, अतुल किम तोलिया जाए। तो जिहड़ा तोलिया ना जा सके, गिणिया ना जा सके, नापिया ना जा सके, वह असीम है। उसकी सीमा बन जाती है जो साड़ी तोल विच आ जाए, जो साड़े नाप विच आ जाए, जो साड़ी गिनती विच आ जाए, वह साड़ी पकड़ विच आ गए, वह साड़े कोल है। साड़े कोल उही चीज है जिसनू असी गिण लिया है, जिसनू असी तोल लिया है, जिसनू असी नाप लिया है। परमात्मा अज तक ना नापिया गया है, ना तोलिया गया है, और ना ही उदी गिनती हो सकी। सारों का फरमान कोई गार है जिदे कोल गाउण दी शक्ति है, समझण दी शक्ति है, बौद्धक बल है, वह कह रहा है हे परमात्मा तू तो एक तान है, तू तो एक शक्ति है, परम शक्ति, पर किन्नी क शक्ति है, ये कित्थों शुरू होंदी है, कित्थे खत्म होंदी है, सब कदम असीम है। तीन दृष्टिया परमात्मा दिया साडे देश दे प्रधान रही ने, सिरमौर रही ने। उन्होंने खास तौर पर गुरु नानक देव जी महाराज ने इशारतन जिक्र किया है इस पौड़ी दे, और तीन दृष्टिया रही ने ब्रह्मा विशन महेश दी। साडे देश दे सनातन मत पुराना मत जो ईश्वर की बंदगी करता है, उस बंदगी देच या विष्णु की दृष्टि होवेगी, या शंकर दी, या ब्रह्मे दी। गुरु नानक देव जी महाराज ने इन्हां तिन्हां दृष्टियां नूं सामने रख के अपना एक दृष्टिकोण जगत दे सामने रखे है, संसार दे सामने रखे है। विष्णु का दृष्टिकोण यह सी, गावे को दात जाने नहीं सां। श्री विष्णु का यह कहना सी कि जो दात है, जो कुछ साडे कोल है, ये सानू दान विच मिले है, ये तन दान विच मिले है, ये मन दान विच मिले है, ये इंद्रे दान विच मिले, दिमागी शक्ति सानू दान विच मिली है, जिसका असी कोई मुल ना दिता होवे, और जो असी बनाई नहीं ओ सानू दान विच मिली है। हर बंदे नू ये तन, मां बाप, बौद्धक बल, इंद्रे, कर्म इंद्रे, ज्ञान इंद्रे, सब दान विच मिले ने। सब तो महान चीज जो साडे कोल है ए तन ते मन और आत्मा, ए दान विच मिली है। तन मन दे आसरे ते असी जो कुछ भी इकट्ठा कीता है वो सब कुछ दान है, क्योंकि तन ही ना होवे, मन ही ना होवे, ते असी की कुछ इकट्ठा कर सकते हैं। तन सानू दान विच मिले है, मन सानू दान विच मिले है। तो विष्णु का साडे देश ते बड़ा भारी प्रभाव पिया। उन्हें कहा कि दात नूं दाते दी दित्ती हुई निशानी जानो। जिसने कोई निशानी दित्ती होवे, उस निशानी नूं वेख के निशानी देण वाला बार बार चेते आंदा। तो विष्णु का कहना सी तन नूं वेखो, परमात्मा नूं चेते करो, मन की गति वेखो, ईश्वर का चिंतन करो, धियां पुत्रां नूं वेखो, प्रभु नूं याद करो, धन संपदा नूं वेखो, अपनिया महल माड़ियां नूं वेखो, ते प्रभु का धनवाद करो, उस नूं याद करो, क्योंकि सब कुछ उस दियां दित्तियां हुईयां निशानियां ने। पंडित हिरदय राम दा ते एक थां ते कहना, हे प्रभु मैं कोई ऐसी चीज तेरे कदमां विच भेंट करना चाहना जो मेरी होवे, मेरी अपनी होवे, क्योंकि तेरी चीज मैं तेरे

चार महापुरखां दा जीवन सुन के ते इत्थे एक दास अर्ज करनी चाहेगा। तुसी बाणी पढ़न वाले समझन वाले बैठे हो ते भाई साहब जी दी अंदर दी एक सिख है कि जिन्हां दी बाणी असी गुरु ग्रंथ साहिब च पढ़ने हां उन्हां भगतां महापुरखां दा जीवन ते उन्हां दी रचना विचों कोई संगत नाल सांझ पाई जाए। मैं कई वारी सोचना क्योंकि सानू जो कुछ शुरू तो सुनाया गया असी उन्हू अपने दिमाग विच फीड कर लिया, गुरु ग्रंथ साहिब नू पढ़न दा यतन ना कीता। क्योंकि अज जो मैं बोलांगा आप सुनोगे, जी सदके सुनो, पर एक बेनती है कोई भी बोले खुद गुरु ग्रंथ साहिब दे नाल आप सांझ पाओ ते जदों गुरु ग्रंथ साहिब दा पाठ करोगे सच एवे कि गुरु ग्रंथ साहिब दा शब्द साडे जीवन दी अगवाई करे, सानू उस खजाने दी जानकारी मिलेगी। हुण अज तक साडे नेड़े सुल्तानपुर है, शायद दास ने अर्ज पिछले दिन भी इत्थे समागम सी कीर्तन दरबार उत्थे कीती होवे, अज तक मैं बाबा कालू जी दी याद विच कदी किसे प्रोग्राम नू अटेंड नहीं कीता। हो सकदा कीर्तनीय गुरसिख बैठे ने, शायद इन्हां ने भी ना कीता होवे। बाबा कालू जी दी यादगार किते ज्यादा नहीं मिलदी, उन्हां दी याद विच किते गुरमत समागम नहीं देखे। कारण इक्को, क्योंकि साडे दिमाग विच इक्को गल पा दित्ती गई, वो झिड़कदे रहे, वो मारदे रहे, उन्हां नू समझ ना पई। पर एक मैं बेनती करांगा, वो पिता ने, पिता अपने पुत्र दे जीवन नू चाहुंदा है अपनी बिरती नाल कि बहुत तरक्की करे, पर सच एवे कि गुरु ग्रंथ साहिब दी शब्द दी रोशनी च देखियो जिथे धरती नू धन किया गया, मां नू धन किया गया, कुल नू धन किया गया, उथे गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच गुरु दे पिता नू भी नमस्कार कीती गई है। गुरु ग्रंथ साहिब विच इक बचन आउंदा है कि धन धन पिता। हुण की आपां बाबा कालू साहिब जी नू धन धन नहीं कहांगे, धन धन पिता, धन धन कुल, धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया माहे। ये चार शब्द ने कि पिता तन, कुल तन, मां तन, ते चौथा शब्द फिर क्या गया गुरु नू तन। हुण ए जिहड़ा शब्द आपां पढ़ने हां कि गुरु ग्रंथ साहिब विच तां बाणी परमानंद दी दर्ज है, पर धन्ना जी नू ए परमानंद बारे क्यों ना गुरु अर्जुन देव ने विच अंकित कीता। बाणी भगत रामानंद जी दी भी दर्ज है, पर चारां भगतां नू विशेष करके हजूर ने अपने शब्द विच उदाहरण वजो लिया, परमानंद, रामानंद, भगत पीपा जी, भगत बेणी जी, भगत तरलोचन जी, बाबा फरीद साहब जी, उन्हां दे भी अमृत बचन दर्ज ने। पर चार भगत क्यों चुने गए, नामदेव जी, भगत कबीर जी, भगत रविदास जी, भगत सैन जी। दरअसल मेरा मन एक गल कहिंदा है कि धन गुरु अर्जुन देव जी का यह शब्द दर्ज करन दा इको कारण सी कि एक जिमीदारा करन वाला उन्हूं यह गल दसी गई कि जिन्हां नूं पिंडां दे लोक नीच कहिंदे ने, देख उन्हां उपर परमात्मा दी इन्नी कृपा होई, वो भगती कर करके परमात्मा विच अपेद हो गए, ते किन्ने इन्हां दे जीवन नूं सुन के एक हल वाण वाले ने प्रतक परमात्मा दे दीदार पा ले। रामानंद, परमानंद, इहदा मतलब यह नहीं कि उन्हां दा जीवन जां उन्हां दी रचना विच कोई अंतर है, क्योंकि उन्हां संबंधी यह मनौत है कि वह स्वर्ण जाति विचों संबंधित ने, पर इन्हां भगतां ने एक क्रांति लियांदी कि जिन्हां नूं लोक कहिंदे सन नीवीं जात दे, उन्हां ने सच एवे कि समाज दीआं नफरत दीआं ठोकरां खांदिआं होइआं वी परिपूर्ण परमात्मा नूं अपने हिरदे विच प्रगट कर लिया है। कबीर साहब दा एक सलोक है, वह कहिंदे ने सच एवे कि लोक मेरी जात दा नाम लै के मजाक उड़ांदे, मैं शहर विच लंघना, पिंड विच लंघना, ते उच्ची जात वाले लोग मेरा नाम लै के पुकारदे ने, ते देखो महापुरखां ने वचन दर्ज कीते, पर कहिंदे ने परमात्मा मैं इस जात तो कुर्बान जाना, जे ए ठोकरा ना मार दे ते मेरे अंदर तेरी भगती दा एहसास किवें पैदा होना सी। उन्हां दे अमृत बोल ने कबीर, मेरी जात को सब को हसने खार,

परनवत नानक तिनकी शरणा जिन तू नाही विसरिया। परनवत नानक तिनकी शरणा जिन तू नाही विसरिया। परम सन्मान योग जुगह जुग अटल सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर हफ्तावारी दीवान दी हाजरी भर रहे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों, आप जी ने हुणे ही बड़े प्यार दे नाल साडे अति सत्कार योग भाई साहब भाई बख्शी सिंह जी होरां ने सतगुरु ने जो अज अमृत वेले हुक्म दी दात सिख संगत नूं बख्शिश कीती है उस दी विचार असानू सरवण कराई। धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह महाराज जी दे सलोक और गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी उन्हां दे पवित्र मुखार बिंद तों उचारण कीती हुई पौड़ी ते धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दी पौड़ी नाल इन्हां दो सलोकां विच गुरु अमरदास जी दे उस पवित्र बचन दी व्याख्या सरवण कराई जो सतगुरु जी ने अपने जीवन दे अंदर कमा के अपने अनुभव दे पवित्र बचन सानू बख्शिश कीते। साध संगत आओ जिमें गुरमुखा ने हुक्म किया सी पिछले साल भी के श्री ननकाणा साहब जी का साका भावा वो कई बारी सुना भी चुके हैं, आप जी ने कैस राही भी सुनिया है, पर जो आप जी का हुक्म धन गुरु नानक साहब जी का वो पवित्र अस्थान जिस थां ते दाते ने रहमतां दा मीह वरसाया उथे कुकर्मी मसंद ने महंत ने इखलाक तो डिग के कियो जिया कणौनियां कारवाइयां कीतियां ते दूसरे पासे उस घर नूं आजाद कराण दे लई सतगुरु दे सिख किन्ने चाओ दे नाल अपने सिर तली दे उत्ते रख के गए ते गुरु नानक साहिब जी दा घर अपने खून दे नाल उन्हां ने उस अस्थान नूं धो के कुकर्मी महंत तो आजाद कराया सी। करो कृपालता धन गुरु नानक साहिब जी दे पावन पवित्र चरण कमलां दी टेक लवो। धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी आप बख्शिश कृपा करके विच वरतो अंदर नूं एकाग्रता टिकाओ बख्श के दाता जी इस गुरु प्यारियां दे इतिहास नूं आप विच वरत के दातार जीओ विचार करा लवो। करो कृपा साध संगत असीस बख्शो गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पावन पवित्र पातशाह जी दे अमृत बचन आपां पढ़ने हां कि जिस धरती ते सतगुरु दे चरण पै जान उस धरती दे भाग इन्ने कु चंगे ने कि उह सुक्की कोई धरती भी मानो पूजण योग हो गई। जिन्हां गुरमुखां ने उस धरती ते जा के दर्शन कीते उन्हां गुरमुखां दे अंदर नूं भी टिका आ गया जिथे सतगुरु के चरण पै। ते गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने धरती नूं भी धन कहो
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖਾਕ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੰਨ ਕਹੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿਖਾ ਉਸ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹੀ ਜਿਸ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਆਇਆ, ਉਸ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹੀ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਮਾਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਣੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਸਾ ਧਰਤੀ ਭਈ ਖਰਿਆਵਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਆਏ, ਸੇ ਜੰਤ ਭਏ ਖਰਿਆਵਲੇ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁੱਲ ਉਸ ਕੁੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅਦਬ ਕਰੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁੱਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਰੰਭ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਰਾਏ ਪੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚਾਰ ਚਪੇਰੇ ਖਰਿਆਵਲ ਹੋ ਗਈ,

अपने तन दे पाए हुए गहने उतार दिते, पर मां दा ओ स्वरूप जिथे ओ ना बहना अंदर नू टिका ते चानन सुगंधी। ते कवि जी कहिंदे जे कोई ए गल कहे भी ए किवें हो सकदा है कि माता तृप्ता जी जिथे बहन उते सुगंधी ते प्रकाश। ते कवि जी कहिंदे ने ओ दुनिया दे लोगो गल करन तो पहला सोचियो, ए ओ भागां वाली अमड़ी है जिस राही करोड़ा ब्रह्मंडा दा मालक इस धरती ते आउंदा पे। उथे कवि जी ने शब्द वरते ने, कह लगे कालू ती बैसे जिस अंदर अत शोभा सो बने सो मंदर, जदप भूखन सकल उतारे भावे माता जी ने गहने ला दिते, तदक तदक सुंदरता अदक उजारे। कह लगे सुन संदेह करे जे को जे सुन के कोई शक करे, कह लगे कोट ब्रह्मांड जास दा सो ते निवास किनू जे थाई, क्यों ना होए तै शोभ सवाई जिस थां ते करोड़ा बंडमंडा दा मालक आ रहा है ओदी शोभा प्रफुल्लित क्यों नहीं होवेगी। धन गुरु नानक साहिब जी दी आमद राय भोए दी तलवंडी ते होई, सब तो पहली जिन्हू दात मिली मैं उस अस्थान संबंधी अर्ज करनी। सब तो पहला एक मुसलमान औरत है जिन्हें मेरे गुरु नानक साहिब दी कृपा नु माने आगमन वेले जिदे ते रहमतां दा मीह बरसिया ते सिख तवारीख ने उस दा नाम दसिया सी दौलतां दौलतां दाई। किसे दे घर बच्चे दा जन्म होना ते पहला कहिंदी सी जजमान जे मालक ने तेनू पुत्र दी दात दिती ते मेनू गरीबनी नू दान पुन करदिया किते खत खिच ना ले। कहिंदे ने सिख विद्वान के मेरे सच्ची सरकार दी जदों आमद होनी सी ते बाबा कल्याण दास जी नू इस दौलतां दाई ने कहा सी, कहन लगी देख रब ने अगे तेनू भगती दा स्वरूप धी दिती है ते जे खुदा त्रुट के तेनू इस वार पुत्र दी दात दे ते मेनू गरीबनी नू चार मन दाने दे दई के सियाल विच पेट भर के बच्चे रोटी खा सकणगे, क्योंकि घटना कत्तक दी पूर्णमाशी दी। कहन लगे जे वाहिगुरु जां खुदा पुत्र दी दात दे ते कृपा करी तन ढकन नू वस्त्र दे दई सियाल सौखा निकल जाएगा, कुछ टके दे दई। कहिंदे ने कि जदों मेरे साहिब दी आमद होई सब तो पहला दीदार इस दौलतां दाई ने कीते, ते जदों बाहर आई ते बाबा कालू जी नू शब्द कहे सन, कहन लगे जदों वधाई दिती ते बाबा कल्याण दास जी ने थाली भरी कोई रुपया दी दौलतां दे अगे कीती। जन्म साखी विच एक बचन लिखे है, कहिंदे ने हाथ ला के थाली नू कहन लगी रहन देवे मैं त्यार मैं ता बहुत रजी। शब्द की कहे रहन देवे मैं त्यार मैं ता बहुत रजी। जे पुछया बाबा जी ने के की कारण दौलतां ए रुपये थोड़े ने, तू दो चार दिन अधिक तेरे घर अनाज भी दियांगा तेरे घर वस्त्र भी भेजांगा। अखां भर के कहिंदी नहीं हुण मेनू दौलत दी अनाज दी ते कपड़िया दी लोड़ नहीं, मेनू सब कुछ मिल गया है। कदी तक उस दे भावना दे शब्द बाबा जी ने कहा कौन सी तेनू ए देण वाला। कहिंदी हकीकत नाम दी दौलत सा मन करके ते कर्मा करके भुखी सा, पता नहीं अज तेरे पुत्र ने पहली वार जदो मुस्कुरा के तकिया अज मेनू वाकई अंदरों ने दौलतमंद कर दिते। ओदी पहली मुस्कुराहट ने मेरे जन्मा जन्मा दी भुख दूर कर दिती है। हां हुण झोली अड्डांगी जरूर पर ओदे चरणा विच जिन्हें एक वारी तकिया ते मेरे अंदर दी भुख चली गई। प्यारियो पहली दात दौलतां दाई नू मिली, उस तो अगे तुरियो पहली सिखी नू कमाण वाली सत्कार योग बेबे नानकी। मैं संखेप विच अर्ज करनी चाहना उस स्थान संबंधी, उस घर विच बेबे नानकी दे नाल मेरे साहिब खेडे ने ते जदो सुरत संभाली बेबे ने ते एक गल कहिंदी सी हजूर जदो सुल्तानपुर कोल गए ना ते कहिंदे ने बेबे जी चरणा नू नमस्कार कर लगे ते साहिब ने अगो मत्था पकड़ के कहा बेबे तू वड्डी थां ते वें मेरा फर्ज बनदा झुकना, ते नेत्रां विच नीर भर के कहा सी मैं कल्ला तेनू वीर नहीं मैं अपना पीर जान के तेनू नमस्कार करनी तू मुर्शद है मेरा। कदी तक्यो एक

परम सम्मान योग सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुबाए मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों आज आप जी शहीदां दे सिरताज पंचम गुरुदेव श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी का शहादत वाला दिन मना रहे हो। आपने हजूर दे पावन पवित्र इलाही बचना दा कीर्तन सरवण किया है।

कि सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज उन्हां दी शहादत दे कारण की सन, सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं जहांगीर दी मतस्वी नीति जिहड़ा ये नहीं सी चाहुंदा कि गुरु नानक साहब दे घर अंदर लोक इन्हां दा बादशाहां नालों वध अदब करन, नहीं सी चाहुंदा कि इन्हां कोल कोई केंद्री अस्थान होवे जिस दे अंदर दी ये बिरती सी मेरे प्रभाव अधीन आके जो इन्हां ने गुरु ग्रंथ साहिब जी दी रचना कीती है, सिरजना कीती है, उस गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर मेरी मर्जी दे मुताबक शब्द पाए जाए। पर सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी ने असूल नाल समझौता नहीं कीता, असूल तो गिरन दी बात नहीं कीती, ते सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज उन्हां नूं शहीद करन दा जहांगीर ने हुक्म दे दिता है, ते लाहौर दी धरती ते मुर्तजा खाए जिस नूं ए फरमान जारी करके बादशाह ने कहे कि गुरु अर्जन देव जी दे परिवार नूं उन्हां दा घर घाट जब्त कर लिया जाए, सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं कोशिश करो मनान दी, जुर्माना भर दे जां ओ गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच साडे मुताबक कुछ बचन दर्ज कर दे। पर गुरु अर्जन देव महाराज जी उपर इस चीज दा कोई असर नहीं, सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज अमृतसर दी धरती तो लाहौर गए ने, हजूर जिदन लाहौर जांदे ने सिख विद्वाना ने इस सारी घटना नूं अपने अपने ढंग नाल बयान कीता है। गुरु अर्जन देव जी घरों निकलन तो पहला अपने सत्कार योग महल जिन्हां नूं आपां अदब नाल माता गंगा जी कहने हां, तुरन तो पहला गुरुदेव ने उन्हां नाल बचन कीते ने कि साडे जान तो बाद किसे किस्म दा कोई सोग नहीं मनाना। इहदा मतलब कि गुरु अर्जन देव महाराज जी समर्थ जानते ने कि लाहौर शहादत होवेगी, परत के असी वापस अमृतसर की धरती ते आना नहीं। गुरु अर्जन देव महाराज जी ने कह साडे जान तो बाद सोग नहीं मनाउणा, उस करतार दे भाणे विच रहना, यह शरीरां दा संबंध बने, एक दे इन्हां ने विछड़ना, शब्द नाल प्रीत करियो, शरीर शब्द नाल जुड़े हुए कदी टुटदे नहीं, ते माता गंगा जी नूं उपदेश दे के गुरु अर्जन देव जी बाबा बुढ़ा जी और भाई गुरदास नूं बुलाया। सिख विद्वान ये भी मानते ने कि गुरुदेव जी गुरता गद्दी धन गुरु हरगोबिंद साहब नूं दे के तुरे, गुरु हरगोबिंद साहब जी नूं गुरता गद्दी दित्ती, बाबा बुढ़ा जी ते भाई गुरदास पिछे रहे ने, हजूर अमृतसर दरबार साहब नमस्कार कीती है, परिक्रमा कीतियां हरिमंदर साहब दियां, ते जदों लाहौर नूं जान लगे ने ते अमृतसर दी बहुत सारी संगत गुरु अर्जन देव जी दे नाल तुरी, कईयां दे हिरदे बैराग नाल भरे पए सन, ते कईयां गुरमुखां नूं इह पता है कि गुरु अर्जन देव जी हुण गए, परत के शरीर विच वापस नहीं आउणा, ते तुर लग्या सारी संगत नूं वापस मोड़ दिता, उस करतार दे भाणे विच ओदी रजा विच रहण दा हुक्म कीता, ते साहिब दे नाल केवल पंज सिख गए। मैं अर्ज करां उन्हां पंजां सिखां विचों भाई विधि चंद ने, भाई लंगा है, भाई पैड़ा है, भाई जेठा जी ने, ते पंजवां सिख है भाई पिराणा। ये पंज सिख गुरु अर्जन देव महाराज जी दे नाल गए ने। लाहौर जदों सतगुरु पहुंचे ने, हजूर नूं हवेली दे अंदर इन्हां ने कैद कीता है, पंजां सिखां नूं वखरियां कैद कीता है, ते गुरु अर्जन साहिब महाराज जी नूं इन्हां ने मुर्तजा खां दे सामने लै

रब ने कंडे मेनू तां लाए ने, लोक देख के मेनू जदों कोल रुकदे ने ते तोड़न दी कोशिश करदे ने, उहने नाल कंडे पैदा करके एक गल कह दिती, इहदी महक नूं खलो के तां मान लै पर इहनूं तोड़न दी कोशिश ना करके रहण दे। मेरे कंडे बाहर मुखी बिरती ने, अंदर मेरे महके, पर कंडिया नूं देख के मेरे अंदर नूं माड़ा ना कहीं। कंडे तां इस करके ने कि मेनू कोई टाणी नालों तोड़ के ना लै जाए। भाई साहब कहन लगे, सिख दा जीवन भी कई वारी आपां तकने आ, इहो जिहे सिख मिलन गे जिन्हां दे कोल जे रब दी गल करिए अंदर नूं ठंड पैगी, जे किते बाणी पढ़नगे तां अंदर नूं धूप आणगे, जे किते गुरु दी गल करनगे तां भिज जाणगे। जदों आम वरतों विच तकने आ ते अंज भासेगा, बंदा ते वाकई बड़ा चंगा है, भगती बंदगी बड़ी करदा पर रुखा जे। भाई वीर सिंह कहिंदे ने, नहीं है ओ फुल पर कंडे इस करके ने दुनिया दे लोगो, किते प्यार प्यार नाल तुसीं इहनूं गुरु तो तोड़ ना जाया। भाई साहिब भाई वीर सिंह ने बचन कीते, कहन लगे किसे ने गुलाब फुल तो पुछिया, गुलाब फुल तो पुछण लगा ते पुछदिया उहने अगों उत्तर बड़ा सोहणा दिता। कहन लगे गुलाब फुल तो किसे ने पुछिया, ऐवे सुंदरता दे साई खे सुहापण दे मालक। गुलाब फुल तो किसे पुछिया, ऐवे सुंदरता दे साई इस सुहापण इस सोल सोज नूं है क्यों कंडियां बज लाई, ए कंडे क्यों पैदा हो गए। अगों कहिंदे ने मस्त अलमस्ती सुर विच सोहणे, हाथ क्या खबर नहीं मैनू। फुल कहिंदा मैनू कोई पता नहीं क्यों कंडे लगे ने, बस मैनू तां इन्नी कुछ समझ पई ए। कहन लगे मस्त अलमस्त सुर विच सोहणे, हाथ क्या खबर नहीं मैनू, तोड़न ना दी फटी मेरे मौला ने लिख लाई। मेरे रब ने इको गल कही है, कंडे वेख के मैनू तोड़ी ना। मैं अर्ज कर रहा, सतगुरु ने बाणी विच भी ये बचन किया, आसा राग विच एक शब्द आंदा है, महाराज दी रहाओ दी तोके बार सूत सगल छो मौला। साहब कहिंदे ने भगत भी कई बारी अंदर नूं लुकांदा है। ये शब्द आरंभ हुंदा है आसा महला पंजवां, साच नाम मेरा मन लागा, लोगन च्यो मेरा ठाठा बागा। कहिंदे ने मेरा अंदर जेड़ा है वो सच्चे नाम भी जुड़े है, पर बार जदों मैं लोकां नाल गलबात करना, ठाठा बागा दा मतलब केवल समाज विच विचरन लई, मैं चित उहनां विच नहीं जोड़िया। साच नाम मेरा मन लागा, लोगन च्यो मेरा ठाठा बागा, बार सूत सगल च्यो मौला। बार इंज लगदा है मैं दुनिया दे कामां विच रुझिया वां, पर कहिंदे ने मेरे अंदर नूं देखो, पर मैं अंदर फुल दी तरह निर्लेप रखे है। बाहर सूत सगल च्यो मौला, अलिप्त रहूं जैसे जल मैं कौला, दीस आवत है बहुत पिहाला। मेरी शकल नूं देख के साहिब कहिंदे ने लोक सोचदे ने मैं किन्ना पुरख तां, पर कहन लगे सगल चरण की ए मन राला, पर मेरे मन नूं देखो मेरा मन तां तुहाडे चरणां दी धूड़ है। इहदा मतलब कि जे बाहरों भुल चुक बोल दे ती खरे हर भाणे, सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब ने कुछ प्रमाण दिते ने। कई वारी सज्जन कहणगे कि बाहर दा जीवन कुछ होर होवे, बाहर मनुख दी गल्लां बातां विच बिरती कुछ होर होवे, ते की ओ अंदरों जुड़िया हो सकदा है। हां सतगुरु ने बाणी विच प्रमाण दिते ते कबीर साहिब ने दो शलोक अपने शलोकां विच अंकित कीते ने। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮਦੇਵ ਤੇ ਤਰਲੋਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਤਰਲੋਚਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਬਹਿਨਾ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਰਨਾ, ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੂੰ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੈਂ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਵਾਂ, ਜਿਉਂ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਆਏ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਵੇਖਾਂ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਭਗਤ ਨੇ, ਕਈ ਐਸੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਸਤਰ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬੜੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਚੇਲੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਤੇਰੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਨੇ, ਬੋਲੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਬੋਲਣਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੱਪੜੇ ਰੰਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ, ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਖਚਦੇ, ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਅੱਗੋ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਉੱਤਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਾਕੇ ਭਰਮੋ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ

एक गुण नाही, अमृत छाड बिखर बिख खाय, माया मोह परम पर फूले, सुत दाराशों प्रीत लगाय। एक उत्तम पंथ सुनहो गुर संगत, तहें मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पात कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे। तू सर्व कला का ज्ञाता, माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, निको ठाकुर देशा। हम पापी तुम पाप खंडन, निको ठाकुर देशा। परम सम्मान योग सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर इकत्र हुए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों, आप जी जिथे हफ्तावारी दीवान विच गुरुदेव दे चरण परसन आए हो, उथे सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जिन्हां दा आगमन दिहाड़ा पिछले दिनी अजे बतीत होया है, उस गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे आगमन नूं आप बड़े प्यार श्रद्धा नाल मना रहे हो। आओ सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे पवित्र जीवन संबंधी आपां विचार गुरु ग्रंथ साहिब दी टेक लै के करनी। आप समूह माई भाई एकाग्रता बख्शनी, सतगुरु दे जीवन दियां कुछ अहम घटनावां जिन्हां विचों सानू बड़ी वड्डी सेध मिलनी है, साहिब दे पवित्र जीवन दी विचार आरंभ करिए। करो कृपा समूह माई भाई, विचार आरंभण तो पहला गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी का आगमन गुरु की वडाली विखे होया है। मैं आरंभ तो शुरू करना चाहना वा साहिब दे आरंभक जीवन तो। सत्कारयोग बाबा बुढ़ा जी ने अरदास कीती, ओ भी थां साडे कोल अज मौजूद है, जिस

साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने इत्थे कृपा करके 6 हरका खूह भी लवाया सी। साहिब सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जदों पुत्र दी दात परमेश्वर ने दित्ती उदों भी गुरदेव उस मालक दी बाणी उहदे नाम नाल उस प्यारे वाहिगुरु दा शुक्र करदे ने। गुरु हरगोबिंद साहिब दा नाम भी बाबा बुढ़ा जी ने रखिया। गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह महाराज बाल उम्र विच उन्हां ते 3 खूनी वार उन्हां दे सक्के ताए वालों कीते गए। मैं ये वैसे अर्ज कर भी चुका हां, पहला एक दाई नूं भेजिया कि जहर दे के इस बच्चे नूं तू जहर दे के मार दे, इहदी मौत दे नाल साडे पुत्र मेहरवान नूं गुरु नानक साहिब दी गद्दी मिल जाएगी। दाई दी पेश ना गई, इन्हां ने एक सपेरा भेजिया सप दे के जेकर हरगोबिंद नूं सप डंग मार के खत्म कर दे तेरे घर नूं रुपईयां नाल भर देंगे। पर सिख तवारीख दे मुताबिक गुरु नानक दी कृपा दे नाल उह सप भी गुरु हरगोबिंद साहिब दा कुछ विगाड़ नहीं सकिया। तीजा खूनी वार सक्के ताए ने कराया कि जिहड़ा खड़ावा गुरु हरगोबिंद साहिब नूं खड़ांदा है ਉਹ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਬਾਬੇ ਪਿਰਤੀਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁੜੀ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਦਹੀਂ ਖਾਏਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਛਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਈਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਏ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ 3 ਖੂਨੀ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਦਾਈ ਰਾਹੀਂ ਕਦੀ ਸਪੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਾਵੇ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ने तिना वारा का जिक्र किया। बंसावली नामे विच केसर सिंह छिबर ने बंसावली नामा दसां पातशाहियां दा उहदे विच इक होर भी जिक्र किया। कहिंदे ने गुरु हरगोबिंद साहिब खेडदे पए सन। मैं अर्ज कर रहा केवल वह केसर सिंह छिबर इहदा जिक्र करदा, कोई होर नहीं। कहिंदे ने बाबे पिरथीए ने जिहड़े बच्चे इहदे नाल खेडदे ने, एक बच्चे दे मां बाप नूं खरीदिया ते उहदियां 2 जेबां सन कमीज दियां, एक जेब दे अंदर उहने मठियाई जहर वाली भर के दे दित्ती, नाल समझा दित्ता जिहदे विच जहर नहीं तू आप खाई ते जहर वाली जिहड़ी मठियाई है इह हरगोबिंद नूं दे दई। पर केसर सिंह छिबर ने केवल लिखिया है, कहिंदे ने उह बच्चे नूं भुलेखा लग गया, विचारा जहर वाली मिठाई आप खा गया ते गुरु हरगोबिंद फिर नवां नरूप है। 3 तां सारे विद्वान मानदे ने। जदों गुरु अर्जन देव जी दी बाणी पढ़ने हैं, सिख कहिंदे ने दाता के पिरथीए ने 3 खूनी वार कीते ने, ते मेरा गुरु अर्जन देव उस अकाल दे शुक्र भी जुड़ जांदा है। सिखो घबराओ ना, बस बाणी दी टेक लै के रखियो, 3 नहीं भावें 3 करोड़ भी ये वार करदा है, पर जिस दा साहिब डाढ़ा होए तिस नूं मार ना साका कोए। साहिब की सेवक रह शरणाई, आपे बख्शे देव डियाई, तिस ते ऊपर नाही कोई। जिस गुरु हरगोबिंद नूं मेरे अकाल पुरख ने भेजिया, उस वाहिगुरु तो वध ताकत कुल किसे कुल नहीं, तिस ते ऊपर नाही कोई। कौन डरे, डर किस का होए। जे क्या महाराज दुख साहब किन्ने ताती वाव ना लग गई, पार ब्रह्म शरणाई, चौगिर्द हमारे रामकार, दुख लगे ना भाई, सतगुरु पूरा भेटिया, जिन बणत बनाई, राम नाम औखद दिया, एका लिवलाई। साहिब बाणी विच कहिंदे ने कोई बात नहीं जे वार करदा है, पर औखी घड़ी ना देखण देई, अपना बिरद संभाले, वाहिगुरु अपने बिरद बाणी दी लाज रखदा। साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब बचपन विच इन्हां उपर चेचक ने शीतला ने वार कीता, जिन्हों आम तौर ते शीतला माता कहिंदे ने उस बीमारी नूं। पर गुरु हरगोबिंद साहिब फिर नवा नरोए, उस अकाल पुरख की कृपा नाल

जो तुम दें सो कहा स्वामी, मैं मूर्ख तहन ना जाई। ठीक फोर दलीस सिर प्रभपुर किया प्यान, तेग बहादुर सी किरिया करी न किन्हू आन। तेग बहादुर के चलत पयो जगत को शोक, है सब जग भयो जय जय जय सुरलोक। धर्म हेत साका जिन किया शीश दिया पर सिर ना दिया, शीश दिया सिर ना दिया। परम सम्मान योग चवर शतर दे मालक तन तन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन पवित्र हजूरी अंदर सोभाए मानख बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी गणों, खफ्तागली दीवान विच हजूर दी चरण शरण विच आप जी ने हाजरी भरी है। इराकी गुरबाणी का कीर्तन आपने सरण किया। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जिन्ना दे शहादत वाला दिन पिछे बतीत होया, उस गुरु तेग बहादुर पिता जी दे पावन पवित्र जीवन उन्हां दी शहादत दी विचार आपां नी करनी, कोशिश

चित्त मरता मरता जग मुआ, कबीर मरता मरता जग मुआ, मर्त ही ना जान्या कोए, ऐसी मरनी जो मरे बहुर ना मरना हो। ऐसी मरनी जो मरे बहुर ना मरना हो।

आप साध संगत कृपा करो मेरे ते, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी मेहर करो, महापुरुष बाबा जी कृपा करन, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, ओ अंदर नूं टिका बख्श के अपने इस पावन पवित्र जीवन संबंधी विचार आप ही करा लैन। करो कृपा प्यारियो, बड़े प्यार अदब दे नाल हजूर दी बख्शिश कीती हुई गुरु फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पिता महाराज जदों माछीवाड़े तो अगे नूं निकले ने ते उधर सिख विद्वाना ने जो पुरातन साडी ए इतिहास दी लीक चली आ रही है कि माता गुजरी जी और छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी नाल ने ते माता गुजरी जी एक घोड़े ते असवार सन। ते सिख इतिहासकार लिखदे ने जदों सरसा नूं पार कीता माता गुजरी जी ने ते छोटा साहबजादा छोटा पोता बाबा फतेह सिंह माता जी ने अपनी गोद विच घोड़े दे अगे बिठाया होया, अपने अगे बिठाया ते छोटा पोतरा अगे वे, वड्डा पोतरा बाबा जोरावर सिंह जेड़े ने ओ दादी मां दे पिछे बैठे हुए। सरसा नदी नूं पार कीता है ते उस माता गुजरी दा हिरदा कदी तकने आ। देखो जिसने पहला पति दी रज के सेवा कीती बाबा बकाला साहिब जी दी धरती ते, ते जदों 9 साल दा पुत्तर होया गुरु गोबिंद राय, उदो अपने नेत्रां नाल तकिया अपने पति नूं आनंदपुर तो जांदियां गुरु तेग बहादुर जी नूं, ते उसे माता ने अपने नेत्रां नाल जदों अपने पति गुरदेव दा शीश आया उस नूं भी अपने नेत्रां नाल तकिया ते नमस्कार कीती है। उसे माता ने कदी आनंदपुर दे ओ दिन भी तके ने जदों हजारां दी तादाद अंदर आनंदपुर साहिब दी धरती ते सिख संगता नमस्कारां करदियां, जदों आनंदपुर दी धरती ते माता गुजरी जी दे चरण परसदियां ने संगतां, ते अज ओ मां ओ भी दिन तक दी पई है कि ओदा परिवार अज सारा खेरू खेरू हो चुका है। मैं सरसा नदी तो आरंभ करना, अज परिवार खेरू खेरू है, वड्डे साहबजादे वड्डे पोतरे ते पुत्र जेड़ा ओ एक पासे ने, जेड़े नूहां ने ओ एक पासे ने, ते माता गुजरी आप छोटे साहबजादियां अपने आप पोतियां नूं लै के ए एक पासे पई जांदी है। ते सिख इतिहास मुताबक इन्हें माता जीतो जी दियां निशानियां नूं सांभ के रखिया होया, ते माता जीतो जी ओ जेड़े आनंदपुर साहिब दी धरती ते अकाल चलाना कर चुके, कहिंदे ने उस माता जीतो जी दियां ए दो निशानियां ने, ए पुत्र दी निशानी है। जदों सरसा नदी नूं पार कीता है जंगल बेलियां विचों निकले ने, ते विद्वान कहिंदे ने पहली रात इन्हां ने कुम्मे माशकी दी झोंपड़ी विच बतीत कीती, इत्थे गंगू रसैया सुदसोइया मिलिया। कुछ विद्वान इत्थे दूना सिंह दी गल करदे ने, उन्हें एक किताब लिखी सी कथा गुरु सुतन की, गुरु दे पुत्रां दी उन्हें चमकौर तो विछोड़ा पाया। पर अज तक जिन्हां विद्वाना ने खोज कीती है सियाणियां गुरमुखां ने, ओह कहिंदे ने सरसा नदी ते परिवार विछोड़े पए ने, माता गुजरी जी जदों जांदे पए ने ते छोटे पोतरे जो गलबात उन्हां ने मां नाल कीती ओह गलबात बड़ी प्यारी है। ओह विद्वान लिखदा है अल्लाह यार खां जोगी कहिंदा जदों सरसा नूं पार कीता है दिन दा चढ़ाव होया है दोपहर हो गई है, ते उस वक्त ना दोनों पोतरे जदो उतर के आराम कर लगे ने, ते दोनों पोतरिया ने पुछया सी मां आपा जदो रात नू आनंदपुर साहिब दी धरती तो चले सां ते पिता जी साडे नाल सन, असी नमस्कार कीती ओना आशीष दिती सी, मां जदो आनंदपुर साहिब दी धरती तो तुरे सां वड्डे भरा भी साडे नाल सन, मां ओ प्यारे सिख भी साडे नाल सन, पर पता नहीं की कारण हो गया दादी मां ना ता पिता जी नजर आउंदे पए ने, ना भरा नजर आउंदे पए ने, ना ओ सिख प्यारे नजर आउंदे ने जेड़े पिता गुरु दे दरबार विच सुभाए मान हुंदे सन। कहन लगे माता

होते हैं। परम सम्मान योग शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाई मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों, आप जी ने इस संध्या वेले दे दीवान अंदर हजूर दे पावन पवित्र इलाही बचन

इस अहंकारी बाप ने यह कह दिता कि मैं तेनू एक कोड़ी दे लड़ लावांगा जिस दे हाथ पैर उंगलियां भी झड़दियां पईयां ने, तू ऐसे जींदे जी नरक भोगेंगी क्योंकि मेरे हाथ विच बहुत कुछ है। ते उस बच्ची ने अपने पिता दी आज्ञा नू सत करके अपने सिर